घोड़े ते सवार होके जालमां दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ़ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला बोल

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी ओनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखां नू पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा से सलाह कीती सारे हैं क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ओ समुंदर दे विच इस तरह घुमण लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी देवते उस शेषनाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है ओ समुंदर दे विच घुम रहा है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बचियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शित हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदू पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया उस वक्त अमृत दा घड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगा पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया कि जिस जगा ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगा प्रगट हुई। इस जगा धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगा नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद किया जाता है।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी

गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हर गोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद कराई।

सोत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिया मैं पंथ चलाव। मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बेको साजा। अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहिबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहिब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है। उस सूरत बोली मैं खालसा। गुरु साहिब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है। उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ए सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ए सूरत क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके लजाने हैं। जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है, एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने, सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया, दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनु हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनु ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उस सिख उठिया, अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदू दरबार विच दाखल होन लगा, इथे भी एक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नू दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया, सिख दे हाथ जुड़े ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तेनु रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी है? सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबल गया सी, दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दित्ती सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखिआ है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहब। संगत बैठी, कीर्तन हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहिब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विचों कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई। जदों दुबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि एक ही हो गया। गुरु साहिब जी

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ਉਹ ਪੰਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਗਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल

अंदर कौतक वरता रहे। द्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन नू चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले,

समझदार सोझी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साडे जेडे ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन एदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड्डे स्वाद भर छड्डे अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगला भी दे लेता अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होता इसे तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबू भी लैंदी है ते दुखी भी होंदी है खुशबू नाल सुखी भी होंदी जीभ ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आया इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे इह नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली केड़ी केड़ी वस्तु ते फिर उस रस पिछे स्वाद देण वाली शय पिछे कई बारी बंदा कमला भी हो जाता ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਛੋਣ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਖਣ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਵਣ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਣਾ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ मच्छी नू जीभा दा रस है पवरे नू सुंघण दा रस पिया है फुल दे विच बैठा बैठा विच ही शहीद हो जांदा है फुल मीटिया जांदा विच खत्म हो जांदा पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है इनू वेखण दा रस है ज्योति उते सड़ मरदा है पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है मिर्ग मीन भरिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया ते पंच दोख असाध जामे बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए तां भी तां की केत कास इहदा किवें बचा होए असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया एक आत्म रस भी है साहिब कलगीधर पातशाह ने वचन कीता है

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी, जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा ए निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होवेगा।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी हो के मांग तू फिरत भीख, कहु महादान हो के मांगो धन देत हो, कहु

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: नहीं, डाकू आए से लेकर बहुत और जा रहे थे। चलो पीछा करो।
1: संग जी तनु हैरानी हो रही है दौड़िया। मैं जो कुछ भी कीता इसलिए कीता कि तू आदमी तैरा नहीं, हालात ने तेन तैरे गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया जिन्हें साथियों ने तेन इना मान सी तेन अकलिया छड़ के नस गए।
2: तुस अज मेरी अखा खोलते सच जी।
1: दौले खां तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्हों सही राह से लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
2: महान इंसान यह किस तरह हो सकता है? मैं तो खौरिया किन्या के खून न हाथ रंगे ने, किन्ने जुल्म किए ने।
1: परमात्मा बख्शन हार है, ऐसा ना लैन नाल तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खां फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पर करना
2: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं कि जाना कलमा की हुंदा है सब।
1: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
2: या अल्लाह।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

नदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? आज सानू शरीर करके सदा वास्ते बिछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ने? ना महाराज, असी इह विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच खिलारिया। आप गुरु गोविंद

पंथ जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने हुण मेरे खालसे दा दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल वचन करने हो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी प्यार नाल पढ़े। मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा, ये अपना धर्म भी बचाएगा दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सरबत का भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सरबत दा भला करना है, दूजियां दा धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए, किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा, होर भी घोर पाप करदा है, घरां विचों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है, किसे ने भरा नूं आखिया वीरा मैं तेनूं लकड़ी वधे सी, किसे ने बाप नूं आखिया बावला मैनूं रख लै, पर अब्दाली दियां फौजां अगे किसे दा जोर नहीं चलदा। कीमती समान ते बीबियां नूं बच्चियां नूं गड्डियां ते लद्दिया तुर पिया है। जदों पुजा मारकंडा दरिया दे कोल शाहबाग दे नेड़े, इत्थे जंगल दे विच बाबा दीप सिंह दी अगुवाई हेठ कुछ सिंह जंगल विच बैठे ने, प्रशादा छकण लगे ने। दो सिंह पानी लैण वास्ते गए ने, सिंघा ने की तकिया, भई आओ गड्ढे ते की जा रहा है, इन्ने बड़े गड्ढे तूड़ उड़ती जा रही है, ये की जा रहा है। इन्हें नू एक बीबी ने सिर तां चुकिया ते सिंघा वल देख के हाल दुआई मचाई, ओए गुरु दे सिंघो, तुहानू गुरु दा वास्ता, सानू इन्हां लटेरियां कोलों बचा लो, बचा लो सानू इन्हां लटेरियां कोलों। सिंघा ने इस बीबी दी आवाज सुनी, समझ गए ने, जाके सारी गल बाबा दीप सिंह जी नूं दसी। बाबा जी ने आख्या, खालसा जी प्रशादा नहीं छकना, साडे लई प्रशादा छकना हराम है, हिंदुस्तान दी लाज गड्डियां ते लदी जा रही है, तां प्रशादा छकांगे जे असीं इज्जत बचा लवांगे।

परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम रिधे नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हिरदे विच वसावां, हर का नाम रिधे नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हिरदे विच जपां, मन करके जपां। हर का नाम रिधे नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपया है और जपनगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम रिधे नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह क्यों दिन, फिर उन्हां दे अंग संग होंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक हैं, बिप विचार किछ नहीं, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पानी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाना है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्शे, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

0: You're listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: जिनों का इष्ट साधक है वो कम प्रयास करते हैं, जिन्हों की हुई बंदगी उत्ते विश्वास है वो बंदगी करके ये नहीं आखते बंदगी की मिले या कुछ नहीं। लबों पे मुहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं, चुपदा ताला उन्हां दे बुलां उत्ते लगा है, पर अपने मन विच अपने प्यारे का स्वास स्वास सिमरन करते ने, बंदगी करते ने। बंदगी कौन करता है जिन्हों उस उत्ते विश्वास है, नहीं तो किसे नू की लोड़ है। जे विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बंदगी करता रहा, बंदगी कीती है, मिलिया कुछ नहीं। आज मस्जिद विच नहीं जाना, आज मैं नमाज नहीं पढ़नी, आज मैं इबादत नहीं करनी। क्यों इबादत क्यों नहीं करनी? कई वरे इबादत कीती है, बंदगी कीती है, जे इना चिर बंदगी करके भी कुछ नहीं मिलिया तो फिर बंदगी किन्ना चिर कीती जानी है। अपने घर विच आकड़ के बैठा है, घर विच बैठिया बैठिया वो समा आ गया, बाहर दियां दलीजां वल ध्यान पिया, दलीजां विच बड़े सत्कार नाल अपना मूह कुत्ता उस दियां दलीजां विच रख के बैठा है। वाह बई वाह, छम छम रोण लगा, मन नूं बड़ी वड्डी सारी लानत पाई, कहण लगा ए कुत्ता है तू इस नूं अपने घर विच रखिया है, ए तां खसम वाला खवाउंदा है, तू इसका साई खवाउंदा है, पर जे तू अपने खसम की बंदगी विच रात जागिया है ते अपने आप नूं एडा वड्डा पीर सदाउणा है, आकड़ के अपने घर विच बह गया मैं बंदगी नहीं करनी। जागिया ते उसकी वफादारी विच है अपने मालक दी, तेरे नालों ये चंगा है, तू ते रात किसे वेले सौ जांदा होवेगा पर ये कुत्ता तेरी वफादारी विच सारी रात जागदा होवेगा। मन उत्ते बड़ी वड्डी ठोकर वजी, राती जागे ते पीर सदावे, रात जाग के अपने आप नूं पीर सदवाउंदा है, राती जागे तां पीर सदावे, पर राती जागण कुत्ते मालक दा दर कदे नहीं छड्डदे भावें सौ सौ खावण जुत्ते। करदा रखिया होया कुत्ता दुरकार के बाहर कढ दिंदे हां, पर थोड़े समय तों बाद उन्हूं फिर अपनियां दलीजां विच वेखदे हां, क्योंकि उस कुत्ते दा अपने मालक नाल अथाह प्यार है, उसका नमक हराम नहीं करता, जिसका खांदा है उसका हराम नहीं करता। पर इंसान जो है जे जुगचारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के मेरा ना चंगा बन जावे, सारा नालों उच्चा मैं बन जावा, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, सारी दुनिया का जस मैं खट लवा। पर गुरबाणी फैसला करती है जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछेगी, जिन्ना चिर तू उसकी नजर थले नहीं है, उसकी छतर छाया अपने उपर नहीं मनता, उन्ना चिर कुछ नहीं है। तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरे गुमार, नानक ने फल जातते ज्यो कुंचर इसनान। जिवें एक हाथी पवित्र जल नाल इशनान करके मन की पूर्ति उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर मिट्टी कट्टे दियां सुंडां भर के अपने उत्ते नहीं सुट लैंदा। पौंक पौंक के रात गुजारन तेरे रूड़ियां सुते, चलो बुलिया यार मनाला नहीं ते बाजी लेते, अजे जित गई तू हार जावेगा दौड़िया।